0: Like initially I used to get like comments, you know, like from, you know, random people just walking by and be like, oh, look at her. She thinks she can do this stuff with the boys and stuff. And you're like, dude, I can hear you. I mean, sometimes you can get pushback like from women within the community.
1: To be honest, it's kind of difficult for us, like as we belong from very traditional families.
2: Like my parents don't support skateboarding because they think it's a male sport. Yeah, it is difficult.
3: बोल रहे थे वो मेरे फैमिली की तरफ से ही बोल रहे थे जो पापा के चाचा वगैरह हैं और गांव के सब लोग ऐसे बोल रहे थे. Then पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ.
4: My parents tell me that don't do skateboarding, you are a girl. And they say, if you broke your any bone, who will marry with you? So in 2018, I run from my house for competition jugad.
5: Earlier it was not right. I ran away from home to Mumbai to skate.
4: I got state gold medal. So after that, my family believes on me. They're proud of me.
5: Because we are doing great with skateboarding, and after we learn some tricks and all, like people started saying that, oh yeah, you girl, you're doing this kind of thing. So earlier it was not like that. They don't support us earlier, but right now it's different. So they're calling me like, hey, so I'm planning to go this time. Now I want to go back.
3: अभी मैं गई थी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद तो उन्होंने बहुत बड़ा मेरा पूरे गांव ने मेरा बहुत बड़ा सत्कार किया और सब लोग बहुत प्यार मिला सबसे. तो अभी अभी कोई नहीं बोलता कि इसे नहीं करना चाहिए ये वो. इवन मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे एज के उन्होंने उनकी शादी करा दी है. जब मैं गई थी तो उन्होंने ये किया और अभी वो बोलते हैं कि हमने भी हमारी बेटियों की शादी करके बहुत बड़ा बहुत गलती की है. हमें भी लगता है कि उनके सपने थे, हमने उनके सपने चूर चूर कर दिए. बिकॉज ऑफ स्केटबोर्डिंग आई रियली इंजॉइंग माई लाइफ. सो थैंक यू सो मच स्केटबोर्डिंग एंड थैंक यू सो मच गर्ल्स स्केट इंडिया फॉर सपोर्टिंग. या
6: I'm gonna feed this leaf to this sacred, beautiful animal. There you go. This is like the best place on earth.
7: We found a bank spot at an Indian wedding hall. At first, we thought we were gonna get kicked out, but people love skateboarding here.